उन्हें छड़िया माया सुहावड़ा तन संत्या नाम पार जिनको पूरब लिखया तिन रंग लगा करमी सत।

दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे।

जप जप जीवा सतगुरु नाम, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा। सुख होटल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे हैं गुरु कै, जानम मरण दुख जाय। दर्शन परसे हैं गुरु कै, जानम मरण दुख जाए।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार
1: चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार
0: क्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार
1: सह सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल
0: सचियारा हुई है कब कूड़ै तुटै पाल
1: हुकम रजाई चलना नानक लिखिया
0: नाल हुकमी होवन आकार हुकम न कहिया जाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई
1: नानक

0: पंचा का गुर एक ध्यान।
1: जीवो कह कर विचार करते कह करण नाही सुमार।
0: धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत।
1: एको बुझे हो वै सचियार तबला ऊपर के तापार।
0: धरती होर परे होर तिस्ते पारत ले कवन जोर।
1: जात रंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम।
0: एहो लिखा लिख जाने।

0: मन कीता पाओ अंतर गति रथ मल ना हो।
1: भगवान तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए।
0: सत वाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ।
1: कवन सुवेला वक्त कवन कवन थत कवन वार।
0: कवन सिरुति महो कवन जित हुआ आकार।

0: सारवे जारे
1: गावन सदी संतोखी गावे वीर करारे
0: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदानाले
1: मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले
0: गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले
1: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: तुद नो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे
1: सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन नरचाई
1: रंगी पाती कर कर जिनसी माया जेनो पाई
0: कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई
1: जो तो सुभाव है सोई कर सी हुक्म न करना जाई
0: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई
1: दा संदोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विभूत
0: किंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
0: आहलेश से आदेश आद नीला नाद नाहत जुग जुगे को वेश
1: भगत ज्ञान दया भंडारण घट

0: सदांग संगे अपंगंग बपुते।
1: एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह तो प्रसाद सोईये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के
0: सुरातन शुद्ध सिद्धार्थक संत समूह अनेक मति के
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के
1: माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे
0: कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
1: भारी पुजान के पू पली बिदने आवत शीस न जात बिचारे
0: एते पै तो कहां पै भूपत अंत को नांगे पाए पधारे
1: गीत फिरे सब देश दिशान को बाजे टोल मृदंग नगारे
0: गुंजत गुड गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे
1: भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे
0: श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे
1: तीर्थ नाम दे आदम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सब
1: हुण आहार जति जत हार सब सब चार हजार के देख है
0: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे
1: शुद्ध सुपाद रंत दुबहा सुशासन अंदर जान दलेंगे
0: भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
1: और अरीन मरोर मुवासन माते मतंगन मान मलेंगे
0: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
1: वीर पार बड़े बरियार बेचारे सार की तार पछैया
0: मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया
1: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया
0: साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक देवैया
1: दानव देव निंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे
1: पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे
0: सात समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सब अब लोक चपेंगे
1: मानव इंद्र जिंद्र नातब जो अंतरलोक को राज करेंगे
0: स्नान गजादिक दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे
1: ब्रह्म सर्व संसची पतंत फसे जम फास परेंगे
0: नर श्रीपत के प्रस है भक्ते नर फेर न देहे तरेंगे
1: कहां पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
0: हाथ प्रियो लिए सात समुद्रन लोक के ऊपर लोक गवायो
1: बास कियो बखे आंसू बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो
0: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो
1: काहू ले पहन पूज धरियो सिर काहू ले

0: देश करो रण कर्ता।
1: जी अस्तोता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुआ मरे।
0: जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे।
1: जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकटने आए है।
0: अच्छा हुए ताही सब काला दुष्ट रिष्ट ने तत्काला।
1: कृपा दृष्टन जाय न हर हो ताके ताप तनक मोहर हो।
0: सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सब सके न कोई।
1: एक बार जन तुम्हें सुभारा काल।

0: प्रवाण हुआ जिन सतगुरु स्यों जत लाया।
1: हे त्रो मेरे हो हर तुम मह जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई,
0: हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हलया।
1: इस संसार तुम देख दे हो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया।
0: गुर प्रसादी बूझे आ जा वेखा, हर एक हर बिन अवर न कोई।
1: नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए देव दृष्ट हो।
0: ए सर्वणो मेरे हो साचा सुन नैनो पठाए,
1: शरीर लाए सुनो सत बाणी,
0: यत सुनी मन तन हरिया हो आ रस।

दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत ना माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यों पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप सुकहो टल गुर सेवी है।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिखाई माया मोह परम पै पूले सुधारा स्यों प्रीत लगाई।

0: दे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
1: पौड़ी अपने पोक पोक कहे पसमण पौर सदाया वड्डा हो दुनीदार गल संकल कत लाया।

लख तपि उपर तीर्था सहज जोग बेबाण, लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लाग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखा।

तराई रहाउ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरह गवाये, जो चाहत सोई हर कियो, मन बाँचत फल पाए। हृदय जपों नेत्र ध्यान लावों, श्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर कै, रसना हर गुण गाए, देखु दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम हारु, छोड़ न कत हूं जाए, कवन उपमा कौन बढ़ाई, क्या गुण कहूं रिझाए, होत कृपाल दीन दयाल प्रभु जन नानक, होत कृपाल दीन दया प्रभु जन नानक दास दसाए, जन नानक दास दसाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कले स्तन माहे मिटावौ, सिमरौ जस बसंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै, वेद प्राण सिमर सुधाखिर, कीने राम नाम काखिर, किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एकै दर्स तुहारु, नानकोन संग मोहि उधारु, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम, रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसाए, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसाए, प्रभ कै सिमरन काल पर हरय, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरय, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागय, प्रभ कै सिमरन दिन जागय, प्रभ कै सिमरन भव न व्यापय, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापय, प्रभ का सिमरन साधकै सांग, सर्वनिधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद सिद नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फलाय, से सिमरै जिने आप सिमराय, नानक ता कै लागो पाय, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बजाय, प्रभ कै सिमरन सब कै सुजाय, प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नारद माहि समाय, प्रभ जी वसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै सिमरै तन सत बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जागु, नानक सिमरन पूरै भागु, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बगासन, प्रभु कै सिमरन अनहत हुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जान जिनको प्रभु मया, नानक तिन जान शरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदो पाए, हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरनी चौ कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसिया बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख रंजना, कट कट नाथ अनाथ,
शरण तुम्हारी आयो नानके प्रभु साथु अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मानुहा नाम तेरे संग सहाई जय मां भयान दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल हो वाय अत भारी हर को नाम किन माय उधारी अनक पुनः चरण करतनी तर अर्क नाम कूट पाप पर हराय गुरमुख नाम जपू मन मेरे नानक पावु सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखी हर का नाम जपत होए सुखी लाख करोड़ी बंदना पर हर का नाम जपत नस्तर अनक माया रंग तख ना बजावै हर का नाम जपत आगावै जी मारगो जातो केला तहर नाम संग उत्सुहेला वैसा नाम मन सदा ते आई नानक गुरमुख परम गत पाई आय छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत पार पराही आनक बिगुन जय आय संगार आय हर का नाम तत्काल उधार आय अनक जो जन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम आओ मैला मुल कबु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपू मन रंग नानक पाई है साध कै संग जी मार के गन जाए ना को सार का नाउ हाँ संग तो सा जी पैण महांद गुबार हर का नाम संग जी आरा जहाँ पंतरा को न सियानू हर का ना तह नाल पछानू जय महा भयान तप्त बहु काम तहर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहाँ त्रिखा मन तुझा कर खाए तह नानक हर हर अमृत बर खाए भगत जना की बर्तन नाम संजना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम दरे जन कोट हर जस कत संदन रातु हर हर औकत साधक मातु हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मंथन रंग रति रंग कै नानक जन कै बरत बिबेकै हर

नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन तो दर दुख लथा नाम की महिमा संत रिद बसाए संत प्रताप दुर सब नसाए संत का संग बड़ भागी पाई आए संत की सेवा नाम ते आई आए नाम तौल का शबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व नंडोला पूज सनाई हर हरे नानक नाम मूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र सिमृत बखयान जोग अभ्यास कर्म धर्म करिया सगल त्याग मन मध्य फिर अनक प्रकार की बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाई हो मैं कर राती वर्त नेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचारु नान गुरमुख नाम जपी एक बारु नौ खन पृथ्वी फिर चर जीव माओ दास पीसर थी वह अगन माय होमत प्राण कन कस वह बरफूम दान न्यौली कर्म कर बहु आसन जैन मार संजमत साधन निमक निमकर शरीर कटावै तापी हो मैं महल न जावै हर के नाम समसर कश नाय नान गुरमुख नाम जपत कत पाए मन कामना तीर दे छुटै गर्भ को मन न मन ते हुटाए सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबून बिखिया टरै जल तो वह बहु देही अनीता शुद्ध कहाँ हे काची पी तौ मन हर के नाम की मह माऊ चौ नानक ना उदरे पातत बहु मूच बहुत सियानप जम का पौ ब्याप अनक जतन कर तृष्णा तरप पीख अनेक अगनी बुझाए कोट पाव दर गनी सजाए छूट सनाई उपयालु मोह ब्याप माया जाल अवर करतु सगली जम डान गोविंद भजन में तिल नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक बोलाए सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगाए साजना की सेवा लागाए जे को अपना दुख मिटावाए हर हर नाम रदा सदगावाए जी को अपनी शोभा लूरै सा संग हो मैं शूरै जी को जन मरण ते डरै सा जना की शरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटा बमान आप को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम तन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृठ साजना सुख दुख समदन सन सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप पुन ही लिपा निरतन को तन तेरो नाऊ निथावे को नाऊ तेरा थाऊ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण कराव नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे अपन संगा प्रभ राते तुमरी उस तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मै उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम उद्यम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जासुन सुन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सलोक निर्गुणिया रे आने सो प्रभु सदा संभाल जिनकी आतस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया की गुण चेत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिन तू सास वार शिंगारिया घर भगन मैं जनह बारिया बार वस्ता तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सैन मखो प्याओ बैठ को दैन यो निर्गुण गुण कशु ना बूझै बख्श लियो तो नानक सीजै जे प्रसाद हर ऊपर सुख बसै सोत प्रात मीत बनता संघासै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाप कर नेत रसनाथ सह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ अंध ब्यापे नान काढ़ ले प्रभ्यापे आद अंत जो राखन हार तस्यो प्रीत न करै गवारू जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको वंदा जांत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मानू सब सारै मुगदो जानू सदा सदा भूलन हारू नानक राखन हारो अपार
ਰਤਨ ਤਿਆਗ

गुण गाई। अनक राज भोग वड़ियाई, हर के नाम कसावन पाई। भूपोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीता। भली सो करनी सो पातनवंता, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंता। सा संग प्रभु दीवनवास।

पुष्टपदी जब अकार एक अश्ना दिष्टिता पाप पुण तप कहते हुता जब तारी अपन सुन समाधु तय बैरभु की संक मात जब इसका वर्ण चेन जापत तब हरक सुख किसी पियावत जब अपन आप आप पर ब्रह्म ता मोका कशोभत परम आपन खेलावर तीजा नान करने हार न दूजा जब हुवत प्रभ केवल तरी तब बंद मुक्त का किसको गणी जब एक हर गमे अपारु तब नरक सुरक का कौन उतारु जब धर गुरु प्रभ से सुबाई तब से सकत का कित ठाई जब आपे आप अपनी जूत रह तब कवन निडर कवन कत डरे आपने आपन तब करने हार नांग ठाकर गमे अपारु अवनाशी सुखा अपने आसन तय जब मरण कौ का विनाशर जब पूर्ण करता वर सोई तब जमकी द्रास कह सोई जब अभिगत गोचर प्रभिका तब चित्रगुप्त किश पूछत लेखा तब नाथ रंजर गोचर गादी तब कौन छुटे गुण बंधन वादी आपन आप आपी चर्जा नानक अपन रूप आपी प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तूता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल चतुर्लक्त को गीस जय जो स्वरूपी जो समावै तय किसे पूकवन तृप्तावै करन करावन करने हार करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेदते विका को चीन जब अपन आप उतारे तो सगन सगन का विचार है जय अपन ऊंचा अपना नीरा तय कौन ठाकर कौन कहिए चीरा विस्मान विस्म रे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप रे शलशीत पी समाया ऊहा किसी व्याप्त माया आप उसको आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जे के एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता ये अपन आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बो बेंत उते ऊंचा नानका उसको आपे पहुंचा जय आवृत प्रवंच कार ते गुण में कीन विस्तार पाप पुण ते पई कहावत को नरक को सुरक बशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मो परम पे पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक के जी बिगत भगते आप जे पसरी पसार संत प्रताप धूपाक आपे तनी उनकी शोभा नो बणी आपे कौत करे अणद जूज आपे रस भोग नरजूज नरजोग जिस पाद सापन नाय लावै जिस पाद सकेल कलावै बेसुमार था गणत।

उत्तरवंत कुलवंत पतवंता जीवन मुक्त जसरे भगवंत तन तन तन जन आया जिस पर सा सब जगत राया जाना मन का ए सुआउ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नान

प्रभुतारी नानक निभी केप हमारे प्रभु की उस्तत करहो संत मीता सावधान अकाग्र चीता सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते

सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख पण है गुरु।

रूपहीन बुत बलखिने मोहे परदेश घूरते आए। नाहन दर्ब न जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पही बैरागन

दरदिस ढूंढण जा देवन हार दातार प्रभ निमख ना मने बसा लालच झूठ विकार मोह

आत्मरस जह जाने हर रंग सहजे मान जिहड़े बंदे अडोल अवस्था विच टिक के प्रभु दी जात दा स्वाद माणदे जिन्हां ने इस आत्मक आनंद नाल सांझ पाई ओह भागां वाले उन्हां दा ही जगत विच आना सफला है। सतगुरु बाणी विच समझा रहे जिथे संसार विच आ के अजीब घर परिवार दीआं जिम्मेवारियां निभांदा है एक जिम्मेवारी निरंकार दी इन्हां सवासां नूं प्रभु दी याद विच सफले करिया सुबह शाम संगत विच बैठिया जिहड़े इस दुनिया विच आ के प्रभु नूं याद रखदे संसार दे कार विहार करदे निरंकार नाल जुड़दे ने उहनां दा आना इस दुनिया विच सफल है। सतगुरु समझा रहे ने आत्मरस

रांगन रांगों सीवन सीवों राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो।